0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par. Log on to www.radiodilbar.pk.
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk.
3: We'll be back. Right after the commercial break.
4: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna na umid shuvi bimarano the para the umid zere. Heather Mumman homeopathic patal khope ki the Heather Mumman homeopathic sabai ki pranista shuvida. Katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic elasara the munpadi nuzar Heather Mumman pasatai pa main Jangiri road bane the Shamansur Baba Madrasal padewal Heather Mumman homeopathic general hospital Shamansur Sawabai humus pa de number bane. कालो बीमार द पारा नंबर वाख 331-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथ अस्पताल उस दो तरह
5: द ऑयली स्किन और द दानो द पार खास मेडिकेटेड डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम ची 500 रुपए बाने बेहतरीन इंशुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम ची द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा ډیر بهترین فارموله دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز په مکمل توګه باندې ختمي او یواز

या चिदेन तासु दिले यो बोरे डी एफी नीमा बोरे यूरिया औ 50 केजी चिदेनो पोटाश एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश या चकले बूटे तासु 2 फुट ता उरसी नो तासु दिले यो बोरे यूरिया वर्कुलेशन.

0: 15 13 232, यानी के 03141513232।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए। हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए। हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।

डीजी डिस्ट्रीब्यूटर थी उमर भाई अगिसरा तो पायलडूना टूल पड़े सिक्किम नेता स्वागत कॉल कोली सी वगैरह बता सुरेंद्र सलाह का अवेलेबिलिटी के बारल अख्तर रावण समो आगसल का ना समो समो आगस तक है ना सुबह तो सवाबी की सुमंग अस्पताल यानी हाथे मुमन होम्योपैथिक जन अस्पताल कम से प्रजांगिरी मंदी शामनसूर मंदिर से सरा निज़दी हाथे मुमन होम्योपैथिक जन अस्पताल है जबार बार दावे में किचिर ता तसु नई खबर या सुधा इलाकी खलग वटावे सु खबर ने अगले सुमंग पे द हाथे मुमन होम्योला पैगाम अगे थोर अस्पताल भाई जांगिरी रोड शामनसूर मंदिर से सरे निजी हाथे मुमन होम्योपैथिक जन अस्पताल ले जी फिचिर था रवान रोजु द पारा या दरा रवाने हफ्ते द पारा द ओपीडी नंबर अगस्तल वाड़ी नुजुमंग द अस्पताल द सवाबई द अस्पताल हेल्पलाइन नंबर सिकम दिया कसे दासे दे सिफर 391 94 94 0 3 391 94 94 पति बने कालो के हुए जान ला धरा रवान ओपीडी सपारा नंबर वाख ले जी माथा बिलाल जान वही लिखी जी सासुल से लिखेगी सासु कौन दग टाइम दग महाल चिसुमरा हम आप दुनिया के समावाज हो रही अब लोग रज चार मैसेज स्कोल के चलते समावाज हो रही काली बंद सवाबई हूँ जमासे सोशल लाइफ में दागी मैसेज जेरा नीम अगेन था तासु खबरी हुई भी अच्छी कम दे सलाम दासे ना चिसुम रहूँ अब रुदुन के समावाज हो रही कागा बैलडोना खर सुन के दी दुकानदारां दी बैलडोना का सुन की बैलडोना लवर बैलडोना मैसेज रे बैलडोना कॉलर जान्द व्हाटएवर आखा जमाई और मान दे हाय ला जमा यू और मान दे नूर खुदा सुपुई دګ ټایم چې څومره ملګری په چوکې ناشتي ونې لاندې هغې کټه چولې ده نن پېښور کې 41 ډیګري سینټي ګریډ چې کوم د ګرمۍ ده یعنی نن ګرمۍ 41 ډیګري سینټي ګریډ ته به یوې دوبو جو ټایم کې د خیر سره خیږي نو ښه ګرمۍ ده او چې کله دغه ګرمۍ کې کلي کې او د کلي کې لختي غاړېله د ونې لاندې کټې اچولې وي ډډ دیوالي اور اگر ڈڈ داسی چیرا بالخ سر ریڈیو لگی دلی وی اور ریڈیو کی دبیل الچان آوازی آئے اللہ دہ میڈیر ارمان دے چکل باورم

है जाना। दाचर तो सुगमनी हाँ, लेकिन अंदाजी तो चाहते हुए जी जमाना, लेकिन जमा जोन बगैर लता ने तीरी गुनो आय है, लेकिन अंची सो रही।

आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM 94।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है, बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: फैक्ट राइट आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी, खुक चरता द दग जवानको प वक्त बानी गम उनकलेशी न प रारवान वक्त की दग जवान के सासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कुम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म ही। और यवाज दाना द दग दानो चकम दागुन दी अग हम प मुकम्मल तो गबाने खत्म हीगी। पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सल्सिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल और क्लिंडा माइसिन कुम ची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी। और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी कुम ची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दानी और दानु दागुना प मुकमल तोगबानी खत्म ही। नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई। द मजीद मालूम तो दारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.com.pk
3: خوش خبری هغا طول بیماران چه ده چه هدوکی مات شیوی یا ده ماته دو نپس غلط پیون شیوی چه ده چه ده خپو او ده لسونو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی به حرکت شیوی او ده چه چه ده خپو ده کندو دنن لاره ختم شیوی کوپی دردونا او تکار کوی هغا طولی زنانا چه ده چه خپی او لسونو سنکیگی او هغا طول مریضان کم چه ده ملا ده مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خو پی کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر روز باندې سوجو نو اخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پیښور نومور تو پیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور

0: वेलकम बैक, आमीन सुम आमीन, करे करे तू मेरी जान बन जाए अल्लाह, करे करे आमीन। ग्रहण कदरमंद अरविंद के प्रोग्राम का स्वागत है। जिलावास हुसैन साहब से कुर्बा जहांगीर अली यूसुफजई द एफ एम सलूर नवी रेडियो दिलबर साहब है दाखिल द आवाज का सावर है। रात कॉल मैसेज व्हाट्सएप पर नहीं, कॉल व्हाट्सएप पर मैसेज को लिखे सलूर ऑप्शन दिए सर टेक्स्ट 0302-55-77-665। ठीक है जी, 0302-55-77-665 बंद रहता था रबे तक को लिखे और मैसेजों ने मैं अनाउंस करी उस तरह तपाती हुआ ना पके ना उसमें जमा पते मोबाइल वाले पिंजे से पासवर्ड लगी दे दी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर, ज पतासो फखर कुम मना जी और शहर में तासो काल को कोशिश को हो नंबर न मिला वेद खा और सब ये थैंक यू वेरी मच जी, दिल मेहरबानी, अल्लाह पाक खुशहाल और आबाद लरा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम सर, जो नमक का मैसेज दी मोबाइल के दाम मुसीबत ही करनी हो। अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम सलाम
0: जी, खैर भाई दा अल्लाह करन दा सो खैर सो को रकम
1: देना। गुलमोहम्मद साहब,
0: हां गुलमोहम्मद के कता सो खैर है पैंतीस नंबर डेरा मेहरबानी सिंह है तो सुखे ठीक ठाक
1: जी
0: डेरा मेहरबानी सिंह है तो सुखे ठीक ठाक
1: मछली
0: हाँ